तू मेरा पगवट प्राण, मैं तेरी पग बन ली है, तू मेरी पग बन ली, ते सिर ते बनी पग नू इज्जत भी समझिया जांदा है कि आज तू तेरी इज्जत मेरी है, मेरी इज्जत तेरी। जदू भी कोई भरा बनता है आम पगा वटा के पगवट भरा बनते ने, तो गुरु साहब जी बाणी विच भी कहंदे ने।

इस गरीब ढाई ने कहा जिस गुरु दी तुसी गल करदे हो कि ओ गरीबां नू अनाथां नू अपने कोल आण देंदे उन्हां कहा हां भाई गुरु नानक दे घर जात पात नहीं देखी जांदी गुरु नानक दे घर कोई भी जावे किसी भी जात दा किसी भी मजहब दा ओनू गल ना लगांदी एक आई सिख गुरु साहब दे दर्शन करन वास्ते तुर पिया इहदे कोल तीन पैसे सन ओह पल्ले बन लए जिथे गुरु साहबां दे बादशाह जहांगीर दे तंबू लगे सन

देखे यार, सामने चला जा। बादशाह दा तंबू सामने लग गए, ए सिख तुरदा तुरदा जहांगीर दे तंबू विच चला गया। पैरां विचों जुतियां बाहर ला दितियां, तीन पैसे पल्लियों खोल के हाथ विच फड़ ले ने। जहांगीर अपने पलंग ते बैठा है, कोल इदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नूं खिच ना पई। हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है, कलगी भी लगी है, क्योंकि बादशाह इसने तीन पैसे बादशाह दे अगे रखे, मथा टेकिया, हाथ जोड़ के कहन लगा, सच्चे बादशाह मेरा जन्म मरण सवार दे। जहांगीर हैरान होके इस काई दा मुंह देखन लग पिया, ते नाले किया, मैं ते बादशाह हां हिंदुस्तान दा, जन्म मरण मैं नहीं सवार सकदा। हां जे तू कवें हेरे ज्वारात महल माड़ियां

बस जन्म मरण सवार दे। जहांगीर कहन लगा जन्म मरण सवारना मेरे हाथ नहीं, जन्म मरण सवारन वाला दूसरे तंबू विच है, मेरे कोलों हाथी घोड़े मांग हीरे ज्वारात मांग जो मैं दे सकना। ओ काई कहन लगा मैनू माया नहीं चाहिए, मैनू ते

एक आई सिख वापस मुड़िया जहांगीर दे कोल आया जेड़े तीन पैसे रख के मथा टेकिया सी वो तीन पैसे चुप के ते फिर बाहर निकल गए। जहांगीर हैरान हो गए अपनी बेगम नूर जहां नूं कहन

दुनिया मेरे को डरती है कि मैं बादशाह, पर वो डरते ने जिहड़े खुशामदी ने। जहांगीर सोचता पे उधरों सिख दूसरे तंबू वाले।

आया मन खिंचया गया क्यों महापुरुषां नूं मिलिए ता मन जिहड़ा है वैराग विच आ जांदा है श्रद्धा विच आ जांदा है किस दुनियावी आदमी नूं मिलिए ते मन विच प्यार नहीं आंदा। इस सिख ने गुरु साहिबां दे दर्शन कीते कहण दी लोड़ ही ना पई कि जन्म मरण सवार दियो साहिबां दे चरणां ते ओह तीन पैसे रख के मत्था टेकिया बिना मंगया सब कुछ मिल गया। हुण फैसला सुनन वालिया ने करना है कि पग किहदी उच्ची। एक पासे बादशाह है ओहदे सिर ते भी पग है, एक पासे गुरु है ओहदे सिर ते भी पग है, पर पगां विच फर्क इह एक पासे जुलम हुंदा है और एक पासे प्यार वंडिया जांदा है। इसे वास्ते मीर अब्दुल्ला ते नत्था मल ढाडी कहंदे ने ऐ गुरु हरगोबिंद साहब पग जांगे।

गर्म कपड़ा भी कोल कोई नहीं, पर फिर भी मन ना डोल रहे है ते ना ही मन डिगा होया। क्यों के जेड़े उच्चे होंदे ने हमेशा उच्चे रहंदे ने, ओ कदी झुकदे या टुटदे नहीं।

बड़ी कोशिश की थी पर साहबजादियां नूं चुका ना सके। आखिर फैसला दिता इन्हां नूं नीहां दे विच चिण दिओ, नीहां विच खड़े करके।

मौत तो डर नहीं लगता, रोना इस करके आ गया है कि दुनिया विच मैं पहला आया सी, तू मेरे बाद। मेरा हक बनदा है पहला मैं शहीद होवां, पर वीर

फिर अखां बंद कर लेनियां और अखां बंद करके मन जागदा ते की कहंदे ने ऐ हवा तू बहुत उच्ची उड़नी ले जांदी होई मेरा एक कुछ

खूब तेरी पगरी, मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे की मगोल, चंदी हजार आलम, एकल खाना

0: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पार वारिया
1: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी
0: अंत न पावत देव सबे

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संघ है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस के नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लीए, इसनू वरत लीए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लैंदे हां, उस नाराजगी फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहते जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। इसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए। जड़ी मक्खी है वो चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंग जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी के शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उसका कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते सारे द सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत। कहते मैं ये सारे द सारे फौरन पाड़ सीते, डिले नहीं किए। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठी ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वह उठी गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस भगत रविदास जी आखते हैं। पहला उसको सुनो, फिर उसका असं अर्थ करांगे।

कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड एंड यू शैल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय पेन एनी लॉन्गर। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। ही क्रिएट्स एंड अडॉर्न्स द अर्थन वेसल्स, ही इन्फ्यूजेस हिज लाइट विद इन देम। जैसा लिख्त लिखिया तुर करते, हम तैसी किर्त कमाई। As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaap kiya sab apna, eho aavan jaan. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aave, mohe anth laptana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaane, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. Kirpa karo deen ke date, mera gun avgun na vichar.

और हाथ में तो पांच तारे मिल के पड़िए और जतन करिए जो गुरु ने शानु पूर्ण पा के दसे हैं किड़ा प्यार कीता है गुरु ने साडे नाल असी भी जतन करिए उन्हों प्यार करने उच्चारण करो श्री भाई शाह भाई गुरदास जी ने गुरसिख का गुरसिख नाल कितना प्यार होना चाहिए किवें दसे आख्या सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पाने एक बड़ा सुंदर सवाल है सिर उच्चा है सब तो नीवे पैर हैं भाई साहब कहेंगे फिर पैरों वाले सिर क्यों जाते उन्हां कदमां दी की खूबी की है सारिया पैरों पर तो नहीं सिर झुक जाता उच्चारण करो श्री सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे मूंह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे ये सारे चिन्ह उपर हैं मूंह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे हजूर कहें सब चिन्ह छड पूजियन कदमा की पूजा क्यों होती है वो कौन कर्म कमांदे वह कदम केड़ा कर्म करते हैं जिन्हों कदम से बदो बदी सिर झुक जाता है उच्चारण करो श्री अगलिया टुकों में भाई साहब जवाब दे रहे हैं आप कह रहे हैं भाई वह कदम तनता दे योग हैं गुर सरणी साध संगति ने चल चल जाते गुरु के सिख के कदम सत संगत वाल जान चले बिलते अमृत वेले उठ के गुरु का सिख इशनान करता है ते फिर मुख तो जप रहा है श्री किधर चले हो जी मैं गुरुद्वारे चले किदी सोहनी सुगंधी है कितनी सोहनी सोह है क्योंकि पहली पौड़ी ही गुरसिखी की अमृत वेले जागना है धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आकीदी पौजल बनी हुई सी दस लख दा घेरा सी इतिहास विच पढ़ो जदों आनंदपुर साहब दा किला छड्या ते एडे वड्डे पौजल विच भी उन्होंने अमृत वेला बिना कीर्तन दे नहीं बिताया जदों अमृत वेले दा समा होया भाई दया सिंह साडा अमल टुट गया गरीब नवाज समझ नहीं आई अच्छा आशा दी वार दे कीर्तन दा समा जा रहा ते उत्थे भी बह के आशा दी वार दा कीर्तन होया हुण असी अपने अंदर छाती पाईए भई केड़ा सुख है जो वाहिगुरु ने सानू नहीं दिता ते फिर इन्हे सुख प्राप्त करके भी असी उहदा शुकराना नहीं करते उन्होंने तो सानू पूर्णे पा के दसे हन कि इतने पौजल विच भी गुरु के सिख ने अपना नितनेम त्यागना नहीं ते असी एडिया सुखां विच रह के भी जे उहदा शुकराना नहीं करते तो फिर सिख कदे होए उच्चारण करो श्री भाई इसलिए आओ भाई भाई साहब गुरदास जी पूर्णे पा रहे हैं कि अमृत वेले उठ के इशनान करके जो गुरु के दरबार जाते हैं भाई गुरदास जी कहते हैं उन्हां नूं कह दिओ जिहड़े जोड़े उन्हां पहने हैं वह उतार देन पता नहीं किस चमड़े दे हैं आ मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बनवा के उन्हां नूं पहना दिओ उच्चारण करो श्री भाई गुर शरणी साध संगति नित चल चल जांदे वतन पर पुकार नूं कर पार वसांदे मेरी खलों मौजरे गुरसिखां दा तो भाई इतनी निम्रता गुरु घर विच है परस पर आपस विच प्यार करिए जदों भी मिलिए फते बुलाइए वाहिगुरु जी का हजूर का वचन है जेड़ा पहला फते बुलावेगा मेरा मुख उस वल होगा उच्चारण करो श्री भाई होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिवलाए हर नामे की होवो जोरी गुरमुख बैठो सफा विषय आज जुड़े बैठे हो हजूर कह रहे हैं सही सुंदर सोने साध संगत जो बहन गुरु नूं कोई सुंदर लगते हैं चंगे लगते हैं जो सत संगत बह के जपते हैं श्री वाह तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी का
ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਲਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ। ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ।

लेकिन हैरानी की गल यह है जितना असी जिंदगी ज्यादा सुख चाहने हाँ जितना असी सुखी रहने की कोशिश करते हाँ आउटकम जो है वह कुछ होर है जिंदगी उतना ही वधेरे दुख आई जाता है उतनी ज्यादा पेन अते पीड़ा साड़ी जिंदगी दे विच

मैं अजिहे सुख तो की लेना है जेड़ा सुख नालों वधेरे दुख लेके आई जा रहा है। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मांगिया भावे। वो सुख मैनू अच्छा नहीं लगता जेड़ा वधेरे दुख लेके आ रहा है। तो गुरु साहब भी अपनी बाणी दी इस पंक्ति दे विच ए कहंदे ने, ऐ संतो ऐसे पुरुषों जिन्हां दे पास के इनसाइट है, ऐसे महापुरुषों ऐसे सतपुरुषों मेरे ते बख्शिश करो, कोई मैनू अजिहा सुख दसो, सो सुख मोको संत बतावो, कोई मैनू ऐसी कंफर्ट दसो जिस दे नाल तृष्णा बूझे मन तृप्तावो। आओ सारे रल के प्यार दे नाल इस पंक्ति नू गाइए, अगा फिर अज दी इस विचार चो असी गुरबाणी दे व्यू पॉइंट दे विचों ए लभीए कि सुख किस तरह मिलता है। आओ सारे रल के गाइए।

साहब कहते हैं चिंत खटोला, चिंता साड़ी मंजी है, खटोला कहते हैं मंजी, चिंता दी मंजी उते असी सब बैठे हैं, चिंत दी ही दिस है सब कोए, अंतर चिंता नैनी सुखी नैन साड़े सुखे पे हैं, अखां साड़ियां कुछ लैक कर रही हैं, अखां दे विच जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है, अखां दे विच कोई लाइफ दा जूस नहीं है, ड्राई है, अंतर चिंता नैनी सुखी मूल न उतरे पोख, अंदर हंगरी हैं, थोड़ा है, कहंदे हैं फरीदा चिंत खटोला, जिस मंजी उते असी बैठे हैं वो चिंता दी मंजी है, वाण दुख अते जिस वाण दे नाल ओ मंजी बुनी गई है ओ है दुख, चिंता दी मंजी वाण दुख दे वाण दे नाल बुनी है, बिरह रब दा जो बिरह है विछोड़ा है ओ है विछावन लेफ, ओ है उस दा बिस्तरा अते उस दे उत्ते ओढ़न वाली जो जो कुल्ट है, ओढ़ना जो है, चिंत खटोला वाण दुख बिरह विछावन लेफ, इस किस्म दा जीवन है, कहंदे हन ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वे, आ साड़ी जिंदगी दी जो तस्वीर है, ए साड़ी जिंदगी दी पिक्चर है, ते आज दी जिंदगी दे विचों असी सब जो इनर पीस है, जो इनर कंफर्ट है, जो रियल कंफर्ट है, उस दी असी सारे तलाश कर रहे हैं, तो गुरु महाराज जी ने अपने इस शब्द दे विच ये दस्या है कि ऐ संतो मैनू को अजिहा सुख दसो जिस दे नाल मन दी तृष्णा बुझ जाए अते मन नू टिका आ जाए, कहंदे हन इंसान इस नू हासिल करन दे वास्ते बाकी जो कुछ भी करदा है कोशिश, उस दा जिक्र महाराज ने इस शब्द च कीता है, उस दे मैं मुक्सर जिहा आप नू फिर परिचय करा दिया, कहंदे हन बहु रंग माया, बहुत रंगा वाली जो माया है, मैमन ऑफ मैनी कलर्स डिसीव्स People in many many ways, बहुरंग माया बहु विध पेखी, कलम कागज सियानप लेखी, कहंदे हन जिन्हां ने बहुत सारिया इंजीनियस राइटिंग्स लिखिया अपने कलमां दे नाल कागजां दे उत्ते, कहंदे मैं देखिया ओ भी अंदरों अशांत हन, महर मलूक होए देखिया खान, बादशाह मलूक अते देखे हन जेड़े लोग खान बने हन, अजेहे जो लोग हन कहंदे हन मैं ओना नू भी देखिया है, तांते नाही मंत्र तां असवारी चोवा चंदन सेज सुंदर नारी, ये तमाम ऐशो इशरत दा समान जो भोगदे हन, कहंदे हन नट नाटक अखारे गया, जेड़े दिन रात पार्टीज दे विच ही रहंदे हन, जेड़े दिन रात सेलिब्रेशन दे विच ही रहंदे हन, जेड़े दिन रात एंटरटेनमेंट ही करदे रहंदे हन, कहंदे हन ओना अखाड़िया दे विच भी मैं दुनिया बैठी देखी है ता मैं मन संतोख न पाया, उथे भी किसी नू संतोख नहीं मिलदा, अगे कहंदे तखत सभा मंडन डोलीचे, बादशाह देखे हन जो बड़े बड़े तख्तां होते बहुत खूबसूरत, जो दुलीचियां होते विराजमान होंदे हन बहुत खूबसूरत सभावां दे विच मंडलां दे विच जो बैठते हन, सुंदर मेवे सगल मेवे खाण नू अनेका किस्म दे जो पदार्थ जिन्हां दे पास मेवे आदि हन, सुंदर बागीचे जिन्हां दे जो बगीचे दुनिया देखण नू तरसदी है, हजूर कहंदे हन अखेड़ बिरथ राजन की लीला, राजियां महाराजियां दे जिन्हां दे पास शौक हन हॉबीज हन शिकार करना जिन्हां दा शौक है, अजियां खेडां दे विच हमेशा गलतान रहण वाले लोग भी कहंदे हन मन ना सुहेला, कहंदे हन मन ना सुहेला परपंच हीला, उन्हां दे मन भी जो सुहेले नहीं हन, ये सारा कुछ देखण तों बाद गुरु साहब अपना जो तजर्बा दसदे हन अते उपदेश

अखी कुदरत अखां दे नाल कुदरत दे दीदार करो, कन्नी बाणी कन्ना दे नाल उस दे विस्माद नाद नूं श्रवण करो, मुख आखण सच नाम ते जबान तो फिर उसकी प्रशंसा।

तो कह देता है जगत निर्धन है, गरीब है, वाहेगुरु दे नाम तो बिना, वो वाहेगुरु वाले जीवन तो बिना इंसान गरीब ही रहिंदा है, चाहे वो कुछ भी बन जाए। जिसके जीवन दे विच वाहेगुरु नहीं है वो गरीब है। गुरु अमरदास जी महाराज ने भी इस विचार की प्रोढ़ता की है। वो भी कहते हैं

द्वारे द्वार सुआन जो डोलत ऐ लोभी बंदे थां थां ते तू फटकदा फिरना हर एक दी खुशामत करना किवें चार पैसे नसीब हो जान ओ देन वाला ता निरंकार है ते तू बंदियां पासों मंग रहे ए संसार ता ऐसा है जिसनू तू पानी पिलाया जिसने तैनू पानी भी पिलाया ना ओ तेरे कोलों दुध दी इच्छा रखदा ए इतना मतबली संसार है किसे ने जे तैनू पानी भी पिलाया ना दुध दी इच्छा रखेगा इसलिए उस निरंकार दा आसरा ले डोलना छड़ दे पटकना छड़ दे मित्रा एक दा होके गुरु दे चरणा विच जुड़ जा उस दा काम कर ते मालक तेरे काम सवारेगा।

लाल खोई है, फिर ए अवसर कद लाहा। गुरु की बाणी कह रही है कि ए मनुख तू अमोलक हीरे लाला तो भी महंगे अपने श्वास धंधिया विच बिता के माया नू इकत्र करन लई तू सारे ए लाल अजाई गवाई आउना है। ए दुनिया दे पदार्थ दुनिया दे सुख ए टुटे हुए कच दी दियाई हन, जिना कोल धन दौलत दुनिया दे सुख हन आवेख जाके ओ कितने चिंतातुर हन के किते कोई चोर चुरा ना लवे, किते कोई होर ना लै जावे, किते कोई होर मुसीबत ना पै जावे। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे आ जिस घर विच बहुती माया है उत्थे बहुतियां चिंतावां दा निवास है, क्योंकि डर है कोई चोरी ना करके लै जा, रात नू नींद नहीं। सद भावना रखन वाला उस मालक दे हुक्म विच रहन वाला एक गरीब तां अपनी नींदर सौंदा अपनी उठदा, पर धनवान बंदे नू नींद नहीं पैंदी भई मते कोई चुरा के ही ना लै जावे। उच्चारण करो श्री आख्या ऐसे धन तो तैं की खटिया, काच बादरे लाल खोई है, तू अमोलक श्वासां दे लाल दे के ते दुनियावी पत्थरां नू खरीद के अपने आप नू बड़ा धनवान समझना, बड़ा बलवान समझना भई मेरे वर्गा कोई नहीं। पर याद रख जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक छिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। पुरातन समय जो शाहूकार हुंदे सन ओ लक दे नाल सोने दी जजीर पा के रखदे सन। कबीर जी देख रहे सन जदों एक धनवान गुजर गया शरीर छड गया ते जदों लकड़ां ते पान लगे ना ते घर वालियां दा ध्यान उस जंजीर ते पै गया ते आख्या भाई ये सोने दी जंजीर किधर लै चले हैं, उसे वेले तोड़ ली। कबीर जी वेख के हैरान हो गए, आख्या कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कुछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। की लै गया भाई नाल की जाएगा, हजूर कहंदे नाल इना जिहड़े अमोलक श्वास तेरे हन इना नाल नाम दे लालां दा वणज करेगा, ए लाल तेरे नाल जानगे। धन गुरु नानक पातशाह जदों दुनी चंद दे पास गए हन बड़ा अमीर सी, हजूर कहन लगे नाल तां इक सुई भी नहीं जानी ते तू इना धन इकट्ठा करी फिरदा है। कहण लगा महाराज कृपा करो मैं बड़ी औखी कमाई कीती है ते कोई ऐसी जुगत दसो जिदे नाल मैं नाल लै जावां। हजूर कहण लगे भाई नाल तां लै जा सकना है तू जे साडे आखे लगे, महाराज हुक्म करो। कहण लगे जितनी माया इकट्ठी कीती है लोड़वंदा नू वंड दे उहदे नाम ते ते तेरे नाल चली जाएगी। उच्चारण करो श्री, इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन ओ मित्रा धन तां तू नाम दा इकट्ठा करना सी ते हुण द्वार द्वार धन लई तू भटकदा फिरदा, तैनू सोती नहीं है कि इना अमोलक श्वासां नाल उस परमेश्वर दा नाम भी जपी दे। इसलिए मित्रा

0: कहूं महाराजन से छिन छेत ले तहु कहूं बेदरीत कहूं तस विपरीत कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो।
1: ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दा अज एक होर